0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

में यूं कब तक घूमोगे? आओ चल के बीते दिनों की छाओ में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

अर के आय न खोजौना। ये कलियुग को प्राणी हो आय के आय न खोजौना, आय के आय न खोजौना, हो हे आय के आय न खोजौना। भगवान खोजने हो भने शास्त्र पर्दा हुँदैन, भगवान खोजने हो भने शास्त्र पर्दा हुँदैन।

मात्र अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरे श्रीमा दशरथ जी का शरीर प्रख्याति नै लग भरे शत्रु राघव का शरी क्षय हुन राजा नौश कैसरे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जै नै परेका घरे मन्दा खुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

नगाड़ेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

निर्माला मासाड़ी का नाट्यंजन शर्वाला से को हिमाला मासाड़ी का नाट्यंजन शर्वाला से को